0: ना मोलो छे राधे हसी
1: लाला अमला गान शुरू होसी मटू में
0: यही ने से खास
1: ना चमन लेदा चांस के में ही
0: चांस से लुबु तो गया ला चांस के बुइन से खरीनो किरण ये लगा ले तो सोसा खजी थे ला टेप में बा ये सम जे सिस दी चेंज हो नम यू ही तो यू ने किरण ये जवा छे जुम दु चांस के बुइन से ना
2: 这句话还是不得。然而的，罗不中吃个清不得。姐妈，从罗永玉那里、皮克田玉那里、卷堂间吃的，一定快要开吃多了。云彩药剂也买吧。破桥剂，姐妈让点点我了呗。我点点是开苏明度。云彩买吧，还着的，这还有那卷堂药的。
3: 没事呢，没事，阿姐米卷堂了嘛，到云彩等来着。伊那米忙些个云彩等的，让牛肉六千个，新煮萝卜的，快看了呀，还给没吧？可等多让大长只吃个，托盘看了嘞。我错话也就用不得，罗马两千万娘牛个，且有狗肉面面三七斤来的，等到云彩做好的。
4: 云彩云呢，米塘汤吃的啦，云彩云呢，来开药吃的哩，上班都云彩个，米吃牛排馍过的。真是真是，通过大门头边当上铁索当嘛的，让他找下银盘了，让他融入亲戚，快让他接生嘛的。
3: 然而嘞，来说呢，就这个铁索拉水钱。

0: मेरे जो जब सांस हो,
1: चाहो चिती चेस, चिंती तंग जगर बे,
0: चिंती तंग जी,
2: जा, जा जा,
0: सांग में निया का लड़ने आ, जा जी, वे,
3: 有
0: 双喜，
3: 双喜。
0: 双喜，双喜，给我给我养哦！
3: 双喜，这地方是怪热多，苏哥干嘛都会对。
1: 嘛随便都，谁想？
0: 양가만년야가지더독한만년나남산조로
2: 마주치를따서가줘
0: 줘

मैं पिके तो पिके तो चे क्यों को लेंस क्यों क्यों चीज़ है क्यों क्यों लेंस क्यों जब सी क्यों